0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays.
11: Foot tapping music.
12: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beats. Wow,
7: FM. Only Tune Super Hit Channel.
8: Fizz on 97.1 FM.
9: Zabardast hits.
10: Music never sounded better.
11: Fizz on 97.1 FM.
12: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

0: It's commercial time.
1: Rosid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 एफएम।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
9: यू आर लिस्निंग 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लीजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जी संगी दोस्तों, एक बार फिर संगी आने जनाबे अली खुश आमदीद, वेलकम बैक। ते तुसें सुनने पे उत्सवान अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक और 97.1 FM रेडियो पर। ते मैं उस मेज़बान बासर ही राजा अगर सोनी साढ़े की ज्वाइन किया, ते मैं आखिया चलो संगी एक दफा फिर दसी छोड़ा। तो जेडे भैन भरा साढ़े की पहले ने सुनने पे, उन्होंने बहुत मेहरबानी, बहुत मुहब्बत, उन्होंने शफकत है जी। तो जी अज जरा सा एक खसूसी प्रोग्राम चलना पे, अज ना एक मौजू संगीता है सा कि एहसास जड़ा है वो कै चीज़ होनी, उसकी किस तरह से समझी सकने। एक सवाल में पूछा सी कि एहसास ते हमदर्दी विच कै फर्क होना, उसने च काफ़ी अच्छी गुफ्तगु जी है। संगी दोस्तों ने मैसेज भी हसने पे, वो भी उसकी भी असं बाद शामिल कर सा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाई सकने। तो जे तुम सी कॉल करना चाहते हो या मैसेज करना चाहते हो तो उसका नंबर है 01157100971। दोस्तों जिसलै एहसास नी गल होवै ते यह नहीं होई सकना कि दुनिया ना जड़ा सारियां तू हसास तरीन इंसान होना। माड़ी अपनी जिंदगी च भी की लगना कि जिस बंदे नी वजह तू अज मैं इत्थे मौजूद हाँ वो मेरी वालदा माजदा है। ते वालदा ना रिश्ता जड़ा वो हसास तरीन रिश्ता होना, क्योंकि वालदा ना जड़ा अपने बच्चे नाल एक रिश्ता होना, एक तालुक होना, एक रब्त होना, एक कनैक्शन होना, वो बहु गूढ़ा ते बहु पीड़ा बेलोस होना। ता दुनिया ने सारियां रिश्तियां तू जड़ा है ना वो वखरा होना, और इस रिश्ते ना जड़ा है कि वो ना ही है कि ये मां नी मोहब्बत, मां नी ममता। तो जिसलै बच्चा बीमार होना ना तो माऊ नी जड़ी मोहब्बत है ना वो उसलै तकने वाली होनी, मां तड़फनी होनी जिसलै बच्चे की कुछ हो गया। चल बच्चा घर तू बाहर होवे तो सारी दिहाड़ी नजर जड़ियां ना वो दरवाजे पर होनी, कड़ा लमड़ा पुत्र वापस ऐसी। ते जे बच्चे साढ़े यार परदेस आ जान ते फिर मावरियां फोनै पर पुछनियां रहनियां, पुत्र तू ठीक ते थे आए ना, पर तू रोटी खाधी या कोनी। ते एक सवाल आम लगना पर इसनी गहराई बहुत डूंगी है। इस कैन इस ऐसे मादी दौर च मटीरियलिस्टिक जिथे चीज़ां सारियां लोग के पुछने के कितने पैसे कमाना है, केड़ी गड्डी है तुहाड़े कोल, केड़ी कड़ी है, केड़े कपड़े लाए नी, केड़ा ब्रांड इस्तेमाल करना है। ते उत्थे अम्मा होरी साढ़े कोल पुछने के पुत्र अज रोटी खाधी है या कोई नहीं। संगी काफ़ी अच्छी डिस्कशन होनी पी इस हवाले नाल, लेकिन मजबूर हाँ कमर्शियल ब्रेक ना एक टाइम है, कमर्शियल ब्रेक तो बाद वापस आने हैं सो कॉल।
1: ते पानी दे बचाव दे विच मदद करिए, शावर विच कट समा लगाओ, लीक कर रहीयां टूटियां या टॉयलेट नू तुरंत ठीक करवाओ, लगातार चल रही टूटी दी बजाए पांडे तोन वाले बाउल दी वर्तो करो, अते अपने डिशवाशर या वॉशिंग मशीन विच इको मोड दी वर्तो करो। पानी अनमोल है, इस नू बचाउन दे लई सानू सारियां नू घट पानी वरतन दी लोड़ है। हर रोज पानी बचाउन दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो।
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115 671 3683. 7777 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at...
7: You are listening 97.1 FM.

जी संगीत दोस्तों, एक दफा फिर जनाब सुन के आने हैं। खुश आमदीद, वेलकम बैक जनाब जी आया नू। मैं सुना अपना मेजबान बासत अली राजा, तुसाना भरा, तुसाना दोस्त, तुसाना सुनने पे सुना अपना प्रोग्राम पोठवारी बैठक। जनाब असं नोटिंग तू लाइव आने होने हर मंगलारे दो तू गिनी ते शामी चार बजे जी हाँ। ते साड़ा जड़ा टाइम आ इसकी पटवारी चाने उन्हें पेशी ने टाइम होया वा, मतलब पेशी नी चाह जड़ी है इस टाइम पीने उन्हें लोग दो बजे तू बाद। ते पेशी नी चाह अगर सोनी पीती आजकल ने मॉडर्न दौर च, पेशी नी कॉफी अगर सोनी पीती ते चलो कोई नहीं, दो सिपलाइक नो कॉफी ने नाल रेडियो ना वॉल्यूम थोड़ा जा उच्चा करो ते गपशप लाने असों नाल। तो जी बिल्कुल, असं वापस असने अपना जरा सा खसूसी एक प्रोग्राम सा चलना पे एहसास, अज ना सा मौजू सी कि एहसास जरा कै बुला होनी, एहसास किस बीमारी ना नाम है। हाँ वो तो ऐसा कहना कि दिल ने रोले टीबी शुगर कैकर सा, मैं हसास हाँ ये बीमारी काफ़ी है। जिले हसास हसासीयत ना और इस तरह ने जज्बिया नी गल होनी होवे ते मैं गल करना पैसा दुनिया में जड़ा एक खूबसूरत तरीन रिश्ता होना मां ना रिश्ता होना, ते मां ने वाले नाल जितनी हसास मां होनी अपने बच्चे वास्ते दुनिया ना शायद ही कोई दूसरा रिश्ता होना हो। जिसलै बच्चा बीमार होना तो सारी गल है माऊ नी जान जड़ी है वो अड़ी होनी, बच्चा कुरे बाहर चला गया है तो माँ जड़ी है वो परेशान होनी, सारा दिहाड़ दरवाजा तकनी रहनी कि केड़े लमाना पुत्र वापस ऐसी, जे बच्चा परदेस च आ जाए साढ़े यार तो फोन तकनी रहनी, फोन कर सी माड़ा पुत्र मिकी तो मैं अपने पुत्र नाल हैलो है करसा, तो इे गल अगर की कि माँ इे पुछनी कि पुत्रा रोटी खाधी है या कोई नहीं, बाकी सारा जाने पुछना कि कै कमाया ही कै लाना है केड़ी गड्डी है तेरे को, लेकिन माँ पुछनी कि पुत्र खादा कै। ये निकी जी गल नहीं है, ये बहुत बड़ी गल है, अगर तुसा इस गल की समझने हो तो तुसा शायद इस गल की महसूस करी सकने हो। माँ जी है ना वो खाली ये नहीं पुछनी होनी कि पुत्र ताड़ी प्लेट है विच कैव है, वो ये पुछनी होनी कि पुत्र तू ठीक है, ताड़ी जिंदगी ठीक तुरनी पी, ते तू की कोई टेंशन कोई परेशानी किसे मसले मसायल च ते तू नहीं है, ते वो एक शेर है ना कि बेनी झोली ना लभी ते राती सारी ठरना रह सें। बेनी झोली बजायर तो एक ऐसा है कि जिसलै बच्चा त्रै चार साल ना होना तो बेनी झोली चू निकली जाना, लेकिन हकीकी जिंदगी च शायद उसकी हमेशा ही बेनी झोली नहीं जरूरत रहनी। तो इसने पर मैं एक कुछ अशार लिखे से आपो, मैं आख्या कि चलो जदू कर इस टॉपिक पर गल हुई तो मैं तुसां गी सनासां। तो जिसलै अज ना एक साड़ा जहरी गल है एक बड़ी खसूसी गुफ्तगू है हसास एहसास इसने पर, ते मैं आख्या चलो तुसा कि यह भी नाल सुनाने कि चुनने आले पहले चुनने कलियां बेनी चोली चों, कैडी जल्दी निकली गई तियां बेनी चोली चों, सत समंदर पार उस पुत्रै बस एक ठोडा खादा सी, सत समंदर पार उस पुत्रै बस एक ठोडा खादा सी, बेड़े विच ही चीज़ां डुली गई बेनी चोली चों, ते औखे वेले आलियां तुपां माड़ी राह विच आईयां नी, अगै वधी जिसलै छावां आईयां बेनी चोली चों, ते इत्थे तक ते सारियां मतां सच ही साबत होईयां ने, अखां नूटी जो अधराती सुनियां बेनी चोली चों। शेर बड़ा खास है कि आले तक ते बासत करना बुआ कलियां टपिया नी, आले तक ते बासित करना बुआ कलियां टपिया नी, माड़े कदमां नाल दुआवां टुरियां बेनी चोली चों। ते मैं तां ही आख्या बेनी चोली जड़ी है वो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो सिर्फ बचपन नहीं, एक वो ऐसी जगह नहीं जिथे तुसां परवरिश पाई, जिथे तुसां कि सर्दी गर्मी तुसां नी भुख उत्थे उन्हां सारियां चीज़ां ने बंदोबस्त होने से, बल्कि बेनी चोली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुसां फील करो तो सारी जिंदगी इंसान की इस चीज़ की जरूरत होनी है। हूँ
ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਮਾਂ ਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ।

समझी जानी कि मर्द की जड़ा ना दर्द नहीं होना या जड़ा बाप है वह हमेशा मजबूत भावें उसने अंदर कह कह परेशानियाँ पलियाँ रहनियाँ माली मुश्किलात हैं कोई जॉब ने मसले मसाइल है कोई फैमिली ने इशूज है या उसने अपनी सेहत जड़ी है वह भी खराब है लेकिन इसने बावजूद वह किसी बंदे नाल जिक्र नहीं करना कि भाई मिकी क्या मसला क्या परेशानी है। जिस तरह वो अपनी परेशानियां ना किसी नाल जिक्र नहीं करना तो बंदे की शख्सियत इस तरह नहीं होनी। घर कई दफा एक बार वो बंदा होना घर ने और उसने बड़िया चीज़ा होनी तो वह खुली तो किसी ने तारीफ भी कदें नहीं करना। कई दफा होना कि बच्चे ये तकने होने कि साढ़े की माड़ी मोटी चोट लगी साढ़े की कोई दुख पहुँचा कुछ गल हुई तो माऊ दी जिहड़ियां बाहां वह फटाफट पुत्रां वास्तै धीआं वास्तै खुली जानियां कि पुत्र माड़ा पुत्र क्या हो गया तू की है क्या है डैडी लगी है तो उठी गल चल कोई गल नहीं है पुत्रा तो माँ जी कई दफा पुत्रा नाल रोनी पैनी लेकिन वालद जड़ा वह दूरों ही आवाज मारसी आखसी वह को नहीं मसला खैर है उठी गल कुछ नहीं होया थोड़े की। अच्छा हूँ इस दिन कई दफा असाने जहन में एक गल शायद जानी होगा कि वालद की साढ़े नाल प्यार नहीं है या उसकी साढ़े नाल मुहब्बत नहीं है लेकिन असल गल है कि वालद दुनिया ने उस सबक सू की सिखाना होना कि जिसल तुसा इस कौंसले चू बाहर निकल सो कुरा टैसो तो फिर तुसा की जाने वाला जिसल कोई नहीं होना तो फिर तुसा की सारी जिंदगी खाली मिठिया गल्ला नहीं बल्कि तुसा की एक वो करख्त आवाज़ भी सुननी पैसी जड़ी के वालद किसी हद तक एक सबक सिखाने वास्ते बच्चे की आना होना चल पुत्र कोई गल नहीं उठी गलो। क्योंकि जड़ा बंदा अपने दुखां दर्दां अपनिया जड़िया उसदिया ख्वाहिशां उन्हां की कुर्बान करना अपनी कोई गल जी वह अपनी जबान पर नहीं आना कि माड़ी वजह तो कि अगर मैं कमज़ोर हो गया तो पिछे माड़े बच्चे परेशान ना हो गए छन तो वह बंदा तुसा ना कितना बड़ा खैर ख्वाह है।

ते संगी एक गल जरूर में थे आखसा कि रिश्ते जड़े ना वो हमेशा लड़ाई नाल ख़त्म नहीं होने, कई बारी रिश्ते खामोशी नाल ख़त्म हो जाने, कमज़ोर हो जाने, ते ना कोई दुश्मनी ना कोई शिकायत, बस फोन पर रबता घट होना, ते आल पुछना बंदा बंद करी छोड़ना या घट करी छोड़ना। ते जिसलै बंदा आल पुछना घट करी छोड़ना ते फिर जहरी गल है सुना राबता जड़ा वह घट होना, ते फिर आस्ते आस्ते आस्ते ऐसियां दूरियां जड़ियां वह पैनिया शुरू हो जानियां कि बंदा उसकी कोई गल समझ नहीं लगनी कि इस ना हुण क्या करिए, हुण असां इस तू वापस किस तरह अचीए।

जी संगीत दोस्तों एक दफा फिर सुन गया है जनाब खुश आमदीद। जी ते मैं सुना अपना मेजबान सुना भ्रा बस्तरी राजा सुना एक दफा फिर खुश आमदीद वेलकम बैक आखना जी कि तुसने भी उत्साह सुनने भी उत्साह अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक जरा कि लाइव जा रहा नॉटिंगम यूके तो रेडियो फजा 97.1 FM पर जे हूँ सौ सा ज्वाइन किया तो मैं सुना कि दसा जनाब कि साड़ा जड़ा प्रोग्राम है वो FM पर ट्यून करी सकने हो 97.1 FM ते नाल डैब पर भी तुम साड़े की सुनी सकने हो ते नाल जे तुम कोल मोबाइल च एप्लीकेशन है तो उसने चुई तुम सुनी सकने हो प्ले स्टोर बजाई तो तुम फजा रेडियो लिखो तो तुम कि फजा रेडियो ना जड़ा है वो मोनोग्राम जड़ा के पर्पल कलर च है और उसने पर गोल्डन माइक है वो तुम कि नज़र आ जासी। जी संगी दोस्तों आज ने जड़ा साड़ा टॉपिक है वो बड़ा एक खास मौजू सी एहसास क्या चीज़ होनी तो उस हवाले नाल कुछ सवालात जड़े सन वो ये सन कि कदें तुसा नाल इस रहा होया होया कि तुसा बाहरू असने हो पर अंदरू तुसा परेशान हो जिंदगी कदें इस तरह तुसा नाल होया हो या फिर कदें बंदे की ये भी होना कि कुसै बंदे दियां आखियां होईयां दो गल्लां दो लफ्ज़ कुसै तुसा नाल इस तरह ने दसे हो तुसा पूरी दिहाड़ तुसानी जड़ी है वह बहुत चंगी जिसके आने ना सूत्री गुजरी होवे तो कई बार इस तरह भी होना कि किसी बंदे दियां दो गल्लां या ईवन एक गल भी जड़ी है वह भी इतनी बंदे की चुभी जानी कि बंदे ना दिल भी त्रुटी जाना। तो एहसास ने जड़े रिश्ते होने जारी गल है उसने च असा माओ प्यो की गल की भैन भ्रा की गल की तो हूँ मैं एक बड़ा खास रिश्ता है जिसने गल कर सा मैं इन रिश्तों की अपने दिल ने बहुत करीब समझना वा तो यकीन तुसा भी इन रिश्तों की एक बड़ी खास अहमियत जड़ी है वह तुसा देने उसो क्योंकि एहसास यही है कि तुसा किसी ना ख्याल करने हो तो कोई तुसा ना ख्याल करना तो वह इतने सच्चे दिलों नाल होवे कि बंदा कई दफा अपना आप भुली जाना उस दूए बंदे ना ख्याल करने आ। तो हुण मैं भैणा भरा तो बाद ये गल कर सा कि सच्चा दोस्त जड़ा ना वो इंसान की जिंदगी कितना जरूरी होना तो जे तुसा ना कोई दोस्त नहीं तो फिर तुसा हकीकी मानिया में गरीब हो ये गल मैं ना आखना एक कौल है हज़रत अली करमुल्ला वच होना तो जिसलै असा निके सा तो यह गल सुनने होने सा या पढ़ने होने सा कि एक कौल के दुनिया में गरीब हो है जिसना कोई दोस्त नहीं है तो उस टाइम यह गल एक मामूली जी लगनी सी क्योंकि असा कि उस टाइम ही यह लगना सी कि शायद पैसे जड़े वो बंदे कोल होण तो बंदा अमीर होना है लेकिन अगर बंदे कोल मुखलस दोस्त होवे तो मैं ना आना होण भी अगर एक विचों को लै तो वह भी कई दफा लखां पर पारी होना। तो सच्चा दोस्त जड़ा ना वो नहीं होना जड़ा कि खुशी ने मौके पर तुसा नाल होवे सच्चा दोस्त वो होना जड़ा कि हर गम हर परेशानी में वो तुसा ने नाल होना तो सच्चा दोस्त जड़ा वो कहने के ऐलान नहीं करना होना कि मैं तुसा नाल बड़ियां निक्कियां करना पिया बल्कि वो खामोशी नाल तुसा नाल टुरना रहना तुसा कि खुद भी बात कात इस चीज़ ना एहसास नहीं होना कि यार कि बंदा मेरे नाल कितनी मुखलसी नाल टुरना पिया लेकिन एहसास होना एक टाइम तो बाद जिसलै थोड़ियां जी दूरियां पैदा हो जानियां। तो सच्चा दोस्त वो नहीं होना जड़ा खाली तुसा ने मुँह पर इज्जत करना रवै ओ हो बहुत चंगा बंदा जी बहुत बड़ा ही ग्रेट आदमी है ये वो तुसा ने गैर मौजूदगी बिच जिस किसी महफल तुसा ना जिक्र होवे अगर उत्थे भी तुसा ना वो पर्दा रखना तुसा ने गल रखना तो यकीनन वो तुसा ना सच्चा दोस्त है। अच्छा वैसे एक बड़ी मजे की गल माड़े जहन चाहिए कई दफा होना कि असा किसी इंसान की अपनी गल बाने तो फिर उसकी समझ लगनी लेकिन कुछ दोस्त कुछ रिश्ते ऐसे भी होने जिन्हें तुसा कोई गल नहीं बाने लेकिन उन्होंने फिर भी समझ आ जानी वो असल एहसास वाले रिश्ते होने। अजकल सोशल मीडिया दी दोस्तियां भी होनियां कि जित्थे कई दफा बंदे की एक तस्वीर पर एक वीडियो पर उसकी 500-500 घर सूए दिल आले जड़े होने लाइक्स ते रिएक्ट्स होने वो बंदे कोल होने लेकिन जिसलै बंदे पर औखा वेला हसना ते 500 भी छोड़ी ते 5 बंदे भी उसने नाल निकलते होने बल्कि 5 भी छोड़ो एक बंदा भी कई बार उसने नाल निकलता होना।
ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਤ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 01157100971 ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਫਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਵਸੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਬਰੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਸ ਕੀ ਆਣੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਆਣੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਲਿਖੀ ਛੋੜਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।

जी संगी दोस्तों, मैं सोना अपना मेजबान सोना भरा बस्तरी राजा एक बार फिर तुसानी खिदमत च वापस आ गए जनाब। पटवारी बैठक प्रोग्राम सा सुनने पे रेडियो फजा 97.1 FM अपरूं। ते अज ना जड़ा साड़ा प्रोग्राम है उस ना तकरीबन 1 घंटा ते 11 मिनट गुजरी चुके हैं। बड़े खूबसूरत माइये टप्पे जड़े के पटवारी नहीं एक पटवार नहीं पंजाब नहीं साड़ी कहने के सकाफत है, साड़ा विरसा है, साड़ी ये विरास है। असा बड़े प्राउडली असा इन चीज़ों की प्रेजेंट करने होने कि यार इन गलों नाल ही साड़ी जड़ी पटवार नहीं सकाफत है उसने बारे नाल लोग साड़े की पहचानने न। ते वापस हसने हूँ अज जो सा टॉपिक है उसने पर वापस हसने अज सा मौजू है वह जूरे वाला यही है कि परदेस ऐसी के एहसास जड़ा वह कै चीज़ होनी। तो परदेस ना तो निकली गया क्योंकि परदेसियों ना भी एक जहरी गल है बड़े एहसास होने तो घर तो दूर होने तो उन्होंने इस एहसास नाल कै तलक है। सौंग बचाने तो पहले गल करने पे दोस्ती ने बारे नाल ते दोस्ती कैसा बेलोस रिश्ता है। बड़े खुश नसीब लोग होने जिन्हों को कोई कीमती दोस्त यार संगी मौजूद हो ते बिल्कुल, और मैं भी उन्होंने चू एक खुश नसीब हाँ। तो बहरहाल जनाब परदेसी जड़ा है ना वो भी एक ऐसे घर बिचों गुजरना जिसलै वो अपने भैन भरा अपने घर बार सब कुछ छोड़ी तो ते वह जिसलै घरों निकलना तो उसनिया भी कुछ ऐसा गल्ला होनिया जड़िया कि शायद उसनी जिंदगी सिर्फ उ समझी सकना उन्हें उसने सच्चे जज्बे की।

जी जनाब, सफरां तो थकिया, मैं नहीं जगाया। जी वेलकम बैक जी, एक दफा फिर सुन के आने खुश आमदीद जी आया नू सुने अपने प्रोग्राम पटवारी बैठक च। मैं सुना मेजबान बासत अली राजा। संगी दोस्तों, जो हूँ साढ़े ज्वाइन किया तो तुम्हें बहुत मेहरबानी, सू बहुत सारा भला जनाब कि मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हाँ कि ट्यून किया 97.1 FM रेडियो फजा जरा कि नोटिंगम तू लाइव जा रहा और असा कि अगर तुम सुनना चाहने हो तो तुम साढ़े 97.1 FM पर भी सुनी सकने हो। उस अलावा तुम साढ़े की डैप पर सुनी सकने हो तो नाल साढ़ी रेडियो फजा की ऐप है उसने पर भी तुम साढ़े की सुनी सकने हो। जड़े संगी दोस्त भैन भ्रा साढ़े की रेगुलर सुनने न उन्होंने पता है कि असाना जड़ा प्रोग्राम है वह हर मंगलारें दो तो गिनी है 4 बजे तक होना था। तकरीबन प्रोग्राम ना 1.5 घंटा 2 मिनट गुजरी चुके हैं तो हूँ प्रोग्राम जड़ा वो अपने आस्ते आस्ते एंड आले पास जाना पाया। लेकिन जड़ा अज ना मौजू है वो साड़ा वो बड़ा खास और दिलचस्प मौजू है और उसना तलक हर इंसान नाल है। हर वो बंदा जड़ा के सा के ना प्या ले जी हाँ उसकी एहसास नहीं किसी हद तक कहने तारीफ ना और एहसास नहीं जड़ी कदर है उसना उसकी अंदाज़ा होना है कि बंदे की एहसास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या कुसा की माड़ा एहसास थे या नहीं थे। ये गल्लां अक्सर असं सुनने रहने कि यार फलाना बंदा बहुत हसास है तो कई बंदे अपने आप है कि भी हसास समझने बल्कि हर बंदा ही अपने आप है कि एहसास ही समझना। लेकिन असल गल है कि बंदे ने मामलात जड़े वह दसने कि वह वाकई कितना ज़्यादा हसास है तो जिथे एहसास नहीं गल अच्छा है उत्थे बे इसी नहीं गल भी होनी कि बंदा जड़ा वो बेहिस उसने आपोजिट जिसकी आने ना के अगर एक पास है हसास है तो दुए पास है बेहिस भी मुआशरा हो जाना कई बारी बंदे भी हो जाने। अच्छा हूँ बेहिसना यह मतलब नहीं कि बंदा हसना नहीं या बंदा रोना नहीं, वह बंदा सारे नॉर्मल बंद कम शम भी करना रहना। लेकिन कई बारी इस तरह होना कि असा नहीं जिंदगी विच असा तखने किसी अपने मुसीबत किसी बंदे की असा तखने तो असा जानी बुझी तो अखा फेरी किन्ने असा आने कि इस शायद असा इसने इस कुछ ना करी सकने राह बदलाई तो असा दुए पास तखने ही पैने। तो वह जरा असा राह बदलाई तो दुए पास तकने ना असल माड़े साहब बेसी वो ही है कि कुछ चाहने कुछ करी भी सकने असा लेकिन इसने बावजूद भी असा उस बंदे कुछ ना करने। तको जिसलै किसी बंदे की किसी मजबूर की लोड़ होवे मदद नहीं तो जिसलै किसी बच्चे की लोड़ होवे तवज्जो नहीं किसी मजदूर नाल ना इंसाफी होनी होवे या किसी महफली च किसी नाल मजाक बनना होवे तो उसने च अगर असानी जड़ी खामोशी है साड़ा इग्नोर करना है वह भी बेइज्जती ने खाते विच आना है।

जी संगीत तो मैं सुना अपना मेज़बान सुना भरा बस्तरी राजा तै सुना सुनने पर सुना अपना प्रोग्राम पुठवारी बैठक एक छोटा जहा कमर्शियल ब्रेक से जिस वजह तो गए सा तो उस बाद वापसी हुई है साड़ी ते जड़ा साड़ा प्रोग्राम है दो तो चार तक सुनने होने प्रोग्राम ने आखिरी 30 मिनट्स जड़े न रही गए तकरीबन ते कॉलर भी आए सन साढ़े लेकिन शायद उन्हें कुछ और की कॉल करनी सी तो उन्होंने आख्या चलो जरा पुठवारी बैठक आए नल गपा शपा लाई कि नहीं मैं आख्या चलो कोई मसला नहीं जनाब असा तो हर किसी की वेलकम करने ते अगर बंदा गल पुठवारी करना हो पंजाबी करना हो कोई मसला नहीं तो मोर दैन वेलकम सही दोस्तों आज ना प्रोग्राम जड़ा वो एक एहसास पर असा कीता सी कि एहसास जड़ा वो कै शैव है हूँ प्रोग्राम जिला ब्रेक होया तो ब्रेक तो जाने तो पहले मैं गल करना पैसा कि बेहिसी जड़ी है वो कैसकी आखने क्योंकि जहरी गल है जिते एहसास नहीं असं गल करने तो दुए पास साढ़े की बेहिसी नज़र आनी है कि जिसलै असं अखा बंद करी किन्ने अपन असं की पता होना भाई ये काम जड़ा वो साढ़े की करना चाहिए साढ़े अंदरों एक आवाज़ असनी होनी जमीर नहीं आवाज़ जिसकी आने लेकिन असं उसने बावजूद असं उस बंद की गल ना सुनने उस बंद की गल ना बुझने असं अपन मजबूरियां की सामने रखी तो आखने कि ना यार मैं बहुत मजबूर स हालांकि अंदरों साढ़े की पता होना कि असं इसनी मदद करी सकने सौखे वेलै

असां केईं वारी एह् आखी ते निकली जाने आं कि असां की कह लगा मिकी कह लगा इस गल्लै नाल, पर इक सवाल एह् पैदा होना कि जे हर बंदा इ'यै आखै कि मिकी कह लगा फिर माशरे नी फिक्र जेह्ड़ी ऐ ओह् किस करनी, ते हर मसला असां हल बेशक ना करी सकने, हर बंदे नी मदद भी मुमकन नहीं होनी, पर जित्थै मुमकन होवै उत्थै बेइज्जती की मजबूरी ना ना देना मी ते ठीक गल नहीं ना कहने उस। देखो जिंदगी च कई दफा इस तरह होना कि एक नरम लहजा, एक नरम लफ्ज, एक छोटी जी मदद या किसी गलत काम के खिलाफ आवाज चाहना यह भी बड़ा अहम हो जाना। ते यह जिंदगी ने मामला जड़े ने वो इंसान ने इस तरह ता ही चलने कि अगर इंसान खाली अपनी जात ना सोचे बल्कि जड़े साढ़े सज्जे खब्बे सराउंडिंग्स जड़े साढ़े बंदे न बंदा उन्होंने बारे च भी सोचे कि ओह् कै सोचने न उन्होंने किस तरह करना चाहिए, तो कॉल एक साढ़े की असनी भी असं दोबारा ट्राई करने कॉल पिक करने नी। जी अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाँ कॉल आई लेकिन इसके बावजूद असं कोई शायद कोई बंदा किसी और नंबर पर कॉल करना चाहना लेकिन वो बार बार साढ़ा नंबर मिलाई छोड़ना, तो चलो कोई मसला नहीं जनाब, असं गल करने पे सा बेसी है, पर के असा नहीं कई दफा होना कि एक नरम जड़ा है लफ्ज असं किसी अदा करने हैं वो किसी बड़ी अहमियत रखना, कई दफा होना एक छोटी जी मदद असं किसी ने करने तो वह भी बड़ी अहमियत रखनी, तो कई दफा इस तरह होना कि किसी गलत काम के खिलाफ जी तुम एक बार आवाज़ बुलंद करने हो वह भी बड़ा अहम किरदार अदा करनी, ते ताई आने खामोशी जड़ी है वह भी कई दफा जुर्म बनी जानी, बेइज्जती ते खामोशी इन्हां ना आपस में तालमेल है किसी न किसी जगह पर। ते संगी दोस्तों इत्थे सवाल यह है कि किसी तुसां नाल कोई ऐसी भलाई की होवे, कोई ऐसा एहसान कुसै कीता होवे, कोई ऐसी मेहरबानी किसी की होवे जिहड़ी तुसां की याद होवे, वह तुसां अगर अज्ज प्रोग्राम में बना चाहुंदे हो तो जरूर तुसां जनाब पाई सकने हो, मैसेज नहीं सूरत च पाई सकने हो। तो दूआ जे किसी ने एहसास तुसां जिंदगी की बदलिया होवे तो तुसां उस चीज़ की भी साढ़े नाल डिस्कस करी सकने हो। तो एक होर गल है कि जे कुसै ने बेइज्जती तुसां दिल दुखाया होवे ते उसकी तुसां माफ भी करी सकने हो। अच्छा हुण मैं इत्थे इस वजह तो यह नहीं आखिया कि अगर तुसां किसी दिल दुखाया तो तुसां साढ़े नाल अच्छी दबाओ असां फिर पूरी दुनिया नाल बाई है, क्योंकि मैं आपो जाती तौर पर यह समझना वा कि अगर इंसान ने ऐबा पर अल्लाह ने जात पर्दा पाया वा तो असां भी कोशिश करिए बस उसकी एहसास दिलाई छोड़ी है जड़ा कि अपने लफ्जा नाल और एक अपने गुड गेस्चर नाल बंदा उसकी दे ही सकना, ते लेकिन बाकी इस तरह उसना ऐलान ना करिए। तो बाकी है कि जे तुसां कदे कुसै नी मदद की होवे वह वाकया भी अज तुसां की याद है तुसां एक अच्छे पैगाम ने तौर पर किसी की देना चाहते हो तो जरूर तुसां जनाब दे ही सकने हो। अच्छा जी अज मैसेज शामिल करने हैं साढ़े एक लिसनर है मुदस्सर जट नॉटिंगम तो उन्होंने एक मैसेज है वो आने कि साढ़े को हमेशा दौलत नहीं होनी, हमेशा वक्त नहीं होना, पर कई बारी साढ़े को एक लफ्ज़ जरूर होना जड़ा किसी ने दिल है कि सुकून दे। बड़ी सोहनी गल की ने कि वाकई गल इस तरह है कि कई दफा साढ़े को दौलत भी नहीं होनी, टाइम भी नहीं होना, लेकिन असं किसी की तसली ना एक बोल बोलने हैं तो अगला बंदा जड़ा वह खुश हो जाना, वो आना यार क्या बात है यार माड़ा इन्ना माण रखिया। काफ़ी सारिया संजीदा गप्पा होनिया पियाँ, तो मैं कई दफा यह फील करना कि जितना ज़्यादा मैं आपो संजीदा वहाँ तो मैं तुसा की भी उस ही संजीदगी विच ही किन्नी तो टुरना रहना, उसकी वजह तो नाल थोड़ी इंटरटेनमेंट जड़ी है वो जरूरी होनी। तो यह सुनो एक सराइकी गीत है जनाब चलड़े चलड़े वाल, त
ਤੇ ਤੱਕਣੇ ਜ਼ਰਾ ਛੱਲੜੇ ਛੱਲੇ ਵਾਲ ਸੰਗੀਤ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਛੱਲੜੇ ਛੱਲੜੇ ਵਾਲ।

एहसास रह जाओ। तो जे तुसां रोड पर गड्डी चलाने पे हो तो कई दफ़ा तुसां की किसे की राह देना पे जाना गलियां में जिस तरह होना कि एक ही गड्डी एक जगह तो गुजरी सकनी। तो जे तुसां थोड़ी देर पिछे रुकी जाने हो तो इसका मतलब है कि तुसां किसे दूए बंदे ना एहसास करने पे हो। तो अगर कोई बंदा तुसां वास्ते रुकी जाना तो इसका मतलब है कि तुसां ना वो एहसास करना पे, तो लिहाजा उसका शुक्रिया जिहड़ा भी बढ़ना है। अच्छा, दुनिया की नज़र च कई दफ़ा ये काम छोटे छोटे होने, लेकिन माशरे की खूबसूरती जड़ी है ना वो इन छोटिया छोटिया गलों नाल ही होनी है। क्योंकि एक साढ़े उस्ताद से वो आने होने से कि जिंदगी ने जड़े बड़े फैसले ना इंसान वो अक्सर बड़ा सोची समझी तक करना है। मसलन के बड़ा फैसला कड़ा है कि मैं तालीम कड़े मैदान जावा, मैं इंजीनियरिंग करा, मेडिकल करा, मैं साइंस जा, मैं आर्ट्स जा, वो अपने सलाह मशवरा करना पूरे खानदान। फिर अगर एक नया मरला मैं शादी जी वो करना चाहना वा, तुम्हें पता है कि साड़ा जो एशियन कल्चर है उसने एक प्रॉपर सलाह मशवरा होना, सारे गलबात होनी, उस तो बाद इतना बड़ा बंदा डिसीजन करना, अच्छा जी मैं हूँ परदेस चू बहर जाना, घरें चू बहर जाना परदेस, तो उसने मैं क्या करा, मतलब ये बड़े डिसीजन है। जोड़ा बंदा कारोबार शुरू करना वह भी कोई भी बंद मशवरा करना, लेकिन असा एक जाए थोड़े जे के माड़े पे जाने हैं कि जोड़े साढ़े रोज़मर्रा ने मामलात होने ना वो असल अहमियत वो रखने, बंदे की पहचान वो होने के तुसा किसी बंदे गल किस तरह करने हो, किसी बंदे नहीं अगर तुसा ना कोई कम पी गया तो फिर तुसा उसकी किस तरह जवाब देने हो, तुसा किस बंदे लैन देन ने मामलात सौ किस करने हो, ये छोटी छोटी गल् होनिया ना ये बंदे की परसनैलिटी दसनिया कि बंदा वाकई ही क्या करना पाया और इस ही तुम्हारी डायरेक्शन ना अंदाजा होना। तो हूँ किसी ने इज्जत की बचाई किन्ना कई दफ़ा उसने तक उसकी किसी की दोस्त बहुत सारे बैठे होने किसी एक महफल तो किसी एक बंद की उन्हें टारगेट किया होना, एक तो चलो शुगल मेले में गल होनी उसना एक और गल है ठीक है, लेकिन कई दफ़ा अगर अगला बंदा तुसाने मजाक न उस उसकी अच्छा महसूस नहीं होना तो फिर मैं समझना कि उसने नाल मजाक करना जरा वो मुनासिब नहीं होना। तो जे उत तुसा बैठे हो तो तुसाने सामने किसी का मजाक जिसके आने ना कि करना और चीज़ होनी, तो मजाक उड़ाना और चीज़ होनी। जे कोई बंदा किसी ने मजाक उड़ाना हो तो तुसा अगर इतना आके चलो कि नहीं यार बस इस तरह एक गल मुनासिब नहीं, तो उस बंदे नहीं तो वह बंदा अपने दिलै में तुसा कैसे जज्बात रख सी। बिल्कुल अगर तुसा इस तरह ना एहसास करने हो तो यह बहुत बड़ी गल है। क्योंकि असं जिस टाइम कई दफ़ा वो आने ना एक फ्लो विच लगे होने ना तो असं कि अंदाजा नहीं होना कि असं कितना मतलब कि किसी बंदे की हर्ट करी सकने क्या करी सकने। तो गल जड़ी है वो कई दफ़ा तुसा किसी की समझाना चाहने हो कि यार तू गलत करना पे, लेकिन तुसा तरीका हो सकना ठीक ना हो कि तुसा भी बंद ने सामने दसा बंद ने सामने किसी बंद की आखसो तो उस कदम भी उस गल ना अमल नहीं करना और तुसाने जी उसने दिलै में जी तुसा वास्तव एक रिस्पैक्ट ना एलीमेंट है वो भी एक टाइम गुजरने खत्म हो गया कि यार दसा बंद ने सामने बंदियां ने सामने इस मिकी तजलील करने की कोशिश की थी। तो जे उ काम तुसा उसकी कलियां बस हो तो वह सारी जिंदगी तुसा ना एहसानमंद रह सी।

ते संगीओ बहुत सारिया संजीदा जल्द गल् हो जाए तो टाइम मैंने पता ही नहीं लगना ते तुसा की अज ना सोंग जरा सुनाने मुड़ वे डोला ते डोले की मुड़ने की कोशिश करने जो मुड़िया पिछे तो

0: जी जनाब, पिछा मुड़ वो डोला साहब मुकदे पेन जी असा मुड़ा है जनाब, टेंशन ना किन्नो तो सुना अपना भरा सुना दोस्त सुना मेजबान बासर राजा एक दफा फिर तुसानी खिदमत च हाजिर है जनाब। सुनने पे सुना अपना प्रोग्राम पठवारी बैठक जड़ा के लाइव जा रहा नॉटिंगम यूके तू तो संगी दोस्तों कई दफा जिंदगी च बंदे की याद आनी है अपने आनी और हमेशा ही याद आनी है कसों परदेस जो तो बंदा आना पिछे मुड़ वो डोला, लेकिन पिछे मुड़ना जो इतना आसान नहीं होना। अस अपने टॉपिक पर जो वापस आने हैं कि अज ना जो सा टॉपिक से सा मौजू से वह सी एहसास तो हूँ सा प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम वाले पास जाना पे तो अपने इख्तिताम जाने कुछ गल्लां जड़ियाँ जरूरी रह गई सो करने। वैसे तो बहुत सारिया गल्लां इस टॉपिक पर इस मौजू पर कीतियां जाई सकनियां सियां, लेकिन वक्त साढ़े को सिर्फ दो घंटे होने तो दो घंटे ना किस तरह गुजरने पता ही नहीं चलना। तो यकीन हूँ साढ़े को आखिरी चार पाँच मिनट ही बाकी बचे तो उसने भी एक गल अक्सर होनी कि कई दफ़ा एहसास तो माफ़ी जी है उन्होंने दोनों आपस में एक ऐसा तालमेल है कि बंदा इसकी भुला ही नहीं सकना कि हर रिश्ते ना बंदे की इख्तलाफ होना भाई ना भाई नाराज़ हो जाना दोस्त दोस्त तो खफा हो जाना, पर कई बार एक जुमला जड़ा ना वो रिश्ते की बचाई सकना है कि मिकी अफसोस है कि माड़ी गल नाल ताड़ा दिल दुखिया। अगर ये बंदा एक गल भाई छोड़ा है कि मिकी अफसोस है माड़ी गल नाल ताड़ा दिल दुखिया तो दूआ बंदा जड़ा वो पहले ही बांह खोली तो खलता होना कई दफा इंतजार करना होना कि माड़े की वो आख्या सही तो मैं वापस उसने अल पास टूरी जा सकता कोई मसला नहीं मिली। तो अपनी गलती की मनना या माफ़ी मंगने ना यह मतलब अर्गिज़ नहीं होना कि बंदा जड़ा इे गलत है ता ये माफ़ी मंगना पाया, बल्कि इस चीज़ की अलामत होनी कि यह बंदा जड़ा उसकी दुए बंदे नहीं कितनी कदर है तो ता उस बंदे नाल दोबारा अपने आप है कि जोड़ना चाहना। लेकिन इत्थे एक होर गल है कि एहसास ना मतलब जड़ा ना सिर्फ ये नहीं है कि बंदा हर ना इंसाफी बर्दाश्त करना रवे ते मोहब्बत नाल जड़ा ना अपनी इज्जत ते अदूदनी हिफाजत जड़ी है ना उसना ख्याल रखना भी जरूरी है। तो को ना माफ़ी खूबसूरत है पर जुल्म की मुसलसल बर्दाश्त करना जड़ा है वह फ़र्ज़ नहीं है। तो बाकी हूँ जारी गल है वह काफ़ी सारिया बतेरिया गलां साढ़े को आखिरी चंद एक मिनट बाकी रहे तो मैं सोचा तो होना कि अपना ख्याल भी इंसान की जड़ा ना वह रखना चाहिए। कई बार असा सारिया नहीं फिक्र करने पर अपना आप भुली जाने घर नहीं फिक्र करने बच्चिया नहीं करने माओ प्यो नहीं करने कारोबार नहीं करने परदेस दियाँ जिम्मेदारियां होनी पर अपना ख्याल असा कदू रखसा। अगर तुसा इतने परदेस रहने हो तो अपनी खुराक ना अपनी डाइट ना तो अपने जो तुसाने अपने टाइम मैनेज करना है वो बहुत ही जरूरी है कि ऐसा कम जरूर होना चाहिए ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए है जिथे तुसा ना अपना जिसके आने ना कि दिमागी सेहत मेंटल हेल्थ जी है बिल्कुल ठीक रवे कोई कम ऐसा करना चाहिए ना तो यह सारिया चीज़ा बंदा अपना ख्याल रखसी तो ता ही वो दुया ना भी ख्याल रखी सकना है। तो हूँ संगी दोस्तों साढ़ा प्रोग्राम जो आलमोस्ट खत्म होने पास जाना पाया तो मैं यही आखसा कि अजा जो सा टॉपिक से साढ़ा मौजू से बड़ा वसी मौजू से तो इसने तुसने पैगाम भी आए तो कॉल्स भी आईया तो बहुत शुक्रिया तुसा साढ़े की सुनिया दो घंटे वास्तव रेडियो फजा की पूरी टीम जी है तुसा की जनाब दो हाथों सलूट करनी तो यह दुआ करने कि सलामत रही है इंशाल्लाह अगले मुला रहे फिर दोबारा मुलाकात हो सी दो तो चार जी हाँ तुसा ने अपने प्रोग्राम पटवारी बैठक तो इस तू पहले अगर सो कोई वट्सएप पर कोई नोट देना चाहते हो तो जरूर सो साढ़े की मैसेज करी सकने हो अगले प्रोग्राम ने मौजू ने हवाले अपना बहुत सारा ख्याल रखे इंशाल्लाह फिर मिल सक।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

जी हाँ, जिंदगी को रोकने की कोशिश में कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी तगोदो करते हैं कि हम जिंदगी की जो असल खूबसूरती होती है, असल रहनाई होती है, उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि हमने कहा कि आज का दिन कितना खूबसूरत था और आज के दिन हमने कायनात के दो रंग देखे, एक बादलों और बारिश में डूबा हुआ और दूसरा सूरज की गर्मी, सूरज की हिद्दत और सूरज की रोशनी, और फिर उसके बाद हम शाम का अंधेरा देखेंगे और फिर ज़िंदगी एक दिन पुरानी हो जाएगी। सो इंसान आज और कल की आस में जीता है और जीता ही चला जाता है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ हम अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं, अपने बेडरूम्स के कर्टन्स पीछे करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हर दिन हमारी ज़िंदगी के सालों में से कम होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर ये आस और उम्मीद का दामन हमें ना थमाया होता तो यकीन कीजिए कि हम बस इसी इंतज़ार में बेसकून से होते और हमारे पास कोई ख्वाहिश, कोई उम्मीद, कोई तमन्ना ना होती। आप सबको खुशामदीद कहते हुए शामिल करती हूँ आज के इस धुन और दास्तां में। एक प्यारा सा गीत आपको सुनाना चाह रही हूँ जो कि है नाहिद अख्तर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत, अपने वक्त का मशहूर गीत था। और ये वो गीत था जो कि पी टीवी पर लगा करते थे और लोग बड़े आराम से इनको बैठकर सुनते, एंजॉय करते। अब इन्हीं गीतों को रीमिक्स कर दिया गया है, एक नया ढंग, एक नया ठप देकर हमारे साथ इन गीतों को पुरानी यादों के साथ जोड़ दिया गया है।

और हम चुप ही रहे। कितना खूबसूरत गीत और नए अंदाज में ये गीत और भी ज्यादा खूबसूरत लगा। समीन कहते हैं कि असल मोहब्बत इंसान को अपने किरदार से होनी चाहिए, और जो भी शख्स किरदार से मोहब्बत करते हैं वो किरदार उनका असासा होते हैं। जो किरदार से मोहब्बत नहीं करते इनके किरदार मोहब्बत के लायक ही नहीं होते। और जिस जिंदगी में कोई काम बाकी न रहे इस जिंदगी में लुत्फ खत्म हो जाते हैं। हम हर सुबह अपने जहन पर बहुत सारे कामों का बोझ लेके उठते हैं और हमें पता होता है कि आज के दिन हमने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी जिन्हें हमने पूरा करना है, और उन्हें पूरा करने की दुआ के साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है। और यही वजह होती है कि एक घर का जो मालिक, जो बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है, अगर उसके घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर हैं तो उसे खाने पीने की इतनी जरूरत नहीं होती, इतनी होश नहीं होती जितना कि उसे अपनी उन जिम्मेदारियों के पूरा होने की एक परेशानी लगी रहती है, और भी इसी परेशानी को लेकर अपने घरों से निकलता है। फिर उसे याद नहीं रहता कि घर के पीछे जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके पास क्या उलझन है, उन्हें किस तरह की राहत आज के दिन चाहिए। बस वो तो अपनी धुन में घर से निकलते ही ढेर सारे कामों में अपने आप को उलझा के अपने आप को भी भूल जाता है। लेकिन ये वो शख्स होता है जिसके साथ हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं। आपने भी कई बार लोगों को सुना होगा कि बाप से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी शिकायतों को डिस्कस करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर शामिल हों। 0115710097 हमारा नंबर है। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बात। और जी हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट है और आप सुन रहे हैं इसे FM 97 से। एक बार फिर से कहेंगे कि जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है मुझे।

जाने बहारा, रश के चमन, बहुत ही प्यारा सा गीत। और मिर्ज़ा भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया, शामिल हुए आप। कुछ टिप्स थी, कुछ मेके और ससुराल को याद करवाया। वो मेका भी छूट गया, वो ससुराल भी छूट गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंसान इतना ज़िंदगी में अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसके मेके में भी एक बहार होती है और ससुराल में भी। हर तरफ रौनकें, मेले और बेशुमार लोग। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मेके की गलियों की तरफ मुड़ के देखें तो उदासी और वीरानी, और ससुराल की तरफ कदम बढ़ाएं तो ससुराल की तरफ भी यही कुछ। कहते ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इतने ढेर सारे नाम आपने याद करवाए, यकीनन वो लोग कहीं ना कहीं हमें सुन रहे होंगे और मसरूफियत में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को गुम कर लिया। बस इस टेलीफोन ने हम सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस फोन से फासला हमने कितना रखना और कितनी दोस्ती, ये तो हम सब बाशऊर लोग हैं। हम सबको अपने लिए कुछ वक्त का तायुन करना चाहिए कि कितना वक्त हमने फ़ोन को देना है, कितना फ़ोन हमने अपने आप को, कितना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तों को, और कितना नींद में, कितना ताज़ा हवा में, कितना पानी पीने में, और कितना फ्रूट्स खाने में, और कितना रब्बे कायनात की इबादत करने के लिए।

तो जी ये प्यारा सा गीत अली डरबी से सुन रहे, हमें बहुत शुक्रिया अली, आप हमेशा शामिल होते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए सुनते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपना

0: सॉन्ग भेजते हैं। और शकील आप भी सुन रहे हमें, आपने थोड़ी सी शायरी भेजी और बहुत सारी चीजें आपने शेयर की।
1: मैं हर वेले हंसदा रहवां
0: जी। बहुत शुक्रिया शकील आपका भी, और यकीनन आपकी शायरी को भी शामिल करेंगे। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं। अली आपका शुक्रिया, टैक्सी करते हुए आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। साइमा बुलेटिन से आप सुन रही हैं, मिसिस खान आप सुन रही हैं बुलेटिन से। मिसिस खान काफी अरसे से बीमार हैं और वो हमेशा कहती हैं कि ये सब मेरे लिए दुआ किया करें। और उनका कहना है कि मेरे कमरे में हमेशा रेडियो जो है वो ऑन रहता है और हम सबके प्रोग्राम सुनती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मिसिस खान, और बहुत सारी हमारी दुआएं जो हैं वो भी आपके लिए हैं, उन तमाम लिसनर के लिए जो किसी भी वजह से परेशान हैं, बीमार हैं,

और ये प्यारा सा गीत मिसी साना आपको बहुत अच्छा लगा। ये न्यू वर्जन है जी नए गीत आई 2026 के, न्यू पंजाबी जी हाँ सॉन्ग्स हैं ये, सजना वे सजना जी हाँ। इसका टाइटल जो है वो ये है, सजना वे सजना, और फीमेल वर्जन। और इस गीत को कहते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। बहुत शुक्रिया अली, आपको अच्छा लगा गीत। और शकील ने भी कहा जी कि पहली बार इस गीत को सुना, वो गीत ही क्या जिसको पहले सुना हो, है ना। गीत तो वो जिसको पहली बार सुने और दिल को छू जाए। कल्प हुसैन बड़ाइज कहते हैं कि जो खतरात को लब्बैक नहीं कहते, ना वो बुलंद होते हैं और ना बुलंद होने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि खतरात में कूदना नहीं चाहिए, खतरात के साथ दस बदस्त लड़ाई करनी चाहिए। जंग खतरात को शिकस्त देने से कामयाबी मिलती है। जो खतरात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, वो पहाड़ों और जंगलों में जिंदगी गुजारते हैं। जो खतरात को लब्बैक कहते हैं, वो जिंदगी के हर मैदान को मैदाने करबला समझते हैं। और जो लोग खामोशी से सुन रहे हैं, उन सबको भी शामिल करते हैं। और जिन लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे, उनका शुक्रिया। अगला गीत शकील, आपने सुनना चाहा इस गीत को, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इस फिल्म को देखा, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत प्यारी सी, और यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। गीत था तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं।

क्या कहने इस गीत के कि मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हसी है, और जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, एक मजदूर के उलझे हुए बालों की तरह। और जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, ताक में रखे हुए चंद रसालों की तरह।

और कितने लोग हैं जिनके पास आज भी वो पुराने खत मौजूद हैं। यकीनन हम में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने उन तहरीरों को आज भी बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से कहीं छुपा कर रखा होगा, जिनमें ख़त उनके वालदैन के भी होंगे और उनके बहन भाइयों के, उनके दोस्तों के, किसी लव वन के, कहीं ना कहीं वो ख़त आज भी हमारी यादों में, हमारी अलमारियों में आज भी महफूज हैं। और हम उस खूबसूरत दौर के लोग हैं जिनके पास पेंसिलें, कलम, पेन जिनको कहते हैं वो, और पैड हुआ करते थे। और एक ख़त के लिए कई दफ़ा महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, 10 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। उस ख़त पर टिकट लगते थे उसके लिफाफे पर, और फिर ख़त पता नहीं किन किन हाथों से गुजरता हुआ उस गांव, उस मोहल्ले, उस शहर, उस मुल्क में आखिर को जा पहुंचता था। और ख़त एक ऐसी चीज़ थी कि जिसे लोग पढ़ते थे, फिर रख देते थे, फिर कुछ दिनों बाद निकाल के पढ़ते थे, फिर रख देते थे। कई सालों के बाद उन तहरीरों को पढ़ के इंसान के जज्बात, एहसास वही हो जाया करते थे। यकीनन हम जिस दौर के लोग हैं, उस दौर को याद करके हम लोग अफसरदा होते हैं। हमें वो यादें तंग करती हैं, सताती हैं, क्योंकि इंसान ने जो भी मंजर अपनी आंखों से देखा होता है, जिन लोगों में उठा बैठा होता है, जिस माहौल को, जिस मौसम को उसने देखा होता है, जो खुशबू उसने कभी कहीं महसूस की होती है, वो जब भी कहीं खुशबू कहीं और जगह पर महसूस करता है, उसे वही मंजर, वही जगह, वो सब कुछ याद आता है। सो जी, क्या कि हम ख़तों के दौर के लोग हैं, आज भी ढेर सारे ख़त हमारे पास मौजूद हैं। मैं कभी कभी उन ख़तों को निकालती हूँ, पढ़ती हूँ और हैरान होती हूँ कि उस वक्त कितना टाइम होता था कि इतनी लंबी लंबी 3-3-4 सफ़ों की तहरीरें लिखना, और उसमें पूरे वाक़यात, इर्द गिर्द होने वाली सभी चीज़ों को लिखा जाता था। और मेरे प्यारे वालिद मुहतरम, जी हाँ, उनके बहुत सारे ख़त मेरे पास हैं। उनकी एक आदत थी कि उन्हें पता था कि मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ है, वो अखबार में जो भी अच्छी तहरीर देखते उसे काट के वहाँ से ख़त में डाल के मुझे भेज दिया करते थे। क्या कहते हैं कि यादों का जब दफ्तर खोला, बस यादें ही यादें थी, और खूबसूरत यादें।

कि यहाँ से फिर न जाना। कितनी खूबसूरत इल्तिजा है, है ना? कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, और जब भी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और मैं हूँ फाखरा मिर्ज़ा, मोहब्बतों से गुंधे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। सो जी, बात करते हैं मुसर्रत नज़ीर साहिबा, जो कि लेजेंडरी अदाकारा गुलोकारा, उन्होंने फिल्म की दुनिया में बहुत काम किया, और एक खूबसूरत चेहरा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी। बहुत अरसा कनाडा में रही, अमेरिका में रही, उसके बाद बहुत सालों बाद अपने वतन जब वापस आई, और एक नए रंग नए ठंग नए ढब के साथ, और फिर उन्होंने आकर एक वेडिंग सॉन्ग्स की कलेक्शन बनाई, जो कि इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि 85 की जितने भी शादियां थी, 85 उसके बाद की, उन सब शादी के जो शादियां थी उनमें बैकग्राउंड में, और फिर उसके बाद शादियों में गाए जाने वाले वो टप्पे, वो सभी मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ में गाए जाते थे। बहुत पॉपुलर हुई, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत अंदाज मुसर्रत नज़ीर, जिनकी पिछले दिनों में तस्वीर देखी, कुछ ओल्ड सी हुई हैं, नए नक्श वैसे ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक पहचान मुसर्रत नज़ीर, अपने वक्त की एक शानदार अदाकारा और दिल को छू लेने वाली गुलोकारा, जिनके नगमे आज भी सुनने वालों के दिलों में ताज़ा हैं। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती, सादगी और मधुर आवाज से जो मुकाम हासिल किया वो आज भी बेमिसाल है। समी कहते हैं कि मुसर्रत नज़ीर अब कनाडा में अपने बेटे के साथ रिहायश पजीर हैं, एक बासलाहियत फिल्म मेकर, और जिंदगी के इस नए मरहले में भी उनकी शायस्तगी और वकार वैसे ही कायम है जैसे कि पहले हुआ करता था।

और जी ये प्यारी सी मुसर्रत नज़ीर जो कि कनाडा में मुकीम हैं और कुछ उनकी एज हो गई है, लेकिन ये कि उनका वो जो एक अंदाज था उनकी शाइस्तगी आज भी दिलों को छू लेती है। सो ये प्यारा सा गीत जी आज के इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर से रेडियो फजा 97.1 FM से। एक प्यारा सा कलाम जी हाँ खूबसूरत सा गीत आप सबको सुनवाते हैं और यकीन ये प्यारा सा गीत आपको अच्छा लगेगा। पंजाबी सॉन्ग डॉक्टर फरीद चौधरी। आप हमेशा पंजाबी गीत की फरमाइश करते हैं सो आपकी पसंद आपके साथ साथ तमाम सुनने वालों के लिए

कुछ ये प्यारा सा गीत डॉक्टर प्रीत चौधरी आपके लिए, और इस वक्त मिसेस अनंत आप भी सुन रही हैं हमें, और आप तबीयत की खराबी के बाद भी रेडियो फजा को सुनती हैं और सब प्रेजेंटर्स के लिए सलाम भेजती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और अली आपका भी शुक्रिया एक बार फिर से आप शामिल हुए। मिसिस हान आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिर्जा भाई आपका भी शुक्रिया, अजरा आप सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जी जो कि इस वक्त हमें खामोशी से सुन रहे हैं सड़क पर चलते हुए। जैसा कि हमने पहले बताया कि नॉटिंघम में बहुत सारी जगहों पे जो है वो रोड वर्क्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको घरों से पहले निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देर से निकलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, आपको देर हो सकती है। सो घरों से जल्दी निकलें ताकि आप अपने अपार्टमेंट पर, अपने काम पर, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप जल्दी से पहुंच सके। तो नॉटिंघम में बहुत सारी जगहों पे रोड वर्क्स हो रहे हैं, और आज सुबह बारिश होने की वजह से भी बहुत सारी जगहों पे जो थी वो ट्रैफिक जैम थी और बहुत ज़्यादा रश था। सो इससे पहले कि पैनिक हों, दूसरों को भी पैनिक करें, क्यों ना ऐसा हो कि हम घरों से थोड़ा सा जल्दी निकल जाया करें। और गाड़ियों में हमने कई बार देखा जी कि गाड़ी चलते हुए लोग अपना डिस्टेंस कम रखते हैं, जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक लगाते हैं और बैठे हुए पैसेंजर वो भी हर्ट होते हैं, और फिर ये कि ड्राइवर भी पैनिक होता है, और जो दूसरा शख्स होता है जो आपकी गाड़ी से आगे होता है वो भी पैनिक, उसको भी हम करते हैं। सो एहतियात से ड्राइव किया करें, रातों को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी बेदार हों, घरों से निकलते हुए नाश्ता चाय का कप ज़रूर पिएं, और एक अहम बात कि घरों से कभी भी लड़ झगड़ के ना निकला करें।

और जी वेलकम बैक टू रेडियो फजा 97.1 FM और प्यारी सी गजल आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश। गुलाम अली खान साहब की आवाज, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बहुत ही प्यारी सी गजल, उम्दा शायरी और गुलाम अली खान साहब की आवाज उन तमाम लोगों के लिए जो कि

0: और हजरात जी, आपकी वॉइस मैसेज आया तो उस वॉइस मैसेज को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक खूबसूरत पैगाम असरा जी ने दिया जो कि प्रोग्राम में सुन रही है।
1: आप ठीक है? आपका शो सुन रही हूँ। बहुत अच्छा शो जा रहा है। और आपकी आवाज की क्या बात है। कभी उसको मैंने चेंज हुआ नहीं देखा ना सुना, माशाल्लाह। आज बेटियों की उदासी की आप बहुत गीत लगा रही हैं। अल्लाह सब बेटियों को खुश रखे। हमें पुराना वक्त याद आ रहा जब आप इस उम्र में होती थी, मैं होती थी, तो ये गीत सुन के उदास होते थे। तो आज भी वो वक्त याद आ रहा। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा। सबके टेक्स्ट मैसेज भी आप बता रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं बहुत सारे। आपकी बातें भी नाल सुन रही हूँ। दो दिन बारिश होती रही, आज तो नहीं हुई, सुबह हो रही थी, पता नहीं इस वक्त कितना प्यारा मौसम बना हुआ, कितनी खूबसूरत धूप निकली है। यही धूप गर्मियों में खाती थी तो सर्दियां शुरू हुई हैं तो कितनी अच्छी लग रही है,
2: जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक।
1: ओके, अल्लाह हाफिज। मैं आपकी बातें सुन जाए दिल कोट करूँ।
2: और फिर एक ड्राइवर भी पैनिक होता है।
0: और जी, ये था अजरा जी का खूबसूरत सा मैसेज। बहुत शुक्रिया अजरा जी, आप सुनती हैं और फिर अपना हिस्सा भी डालती हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि बोल के लब आसात हैं तेरे। ज़रूर बोला करें, अपनी फीडबैक, अपनी राय ज़रूर दिया करें, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ऑन एयर आकर भी। कहते हैं कि बात करें तो फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है, बात से बात को बात मिलती है तो फिर बात दूर तलक जाती है। जी, तो प्यारी सी अजरा जी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जी हाँ, क्या कहते हैं कि अली का शुक्रिया, अली बहुत शुक्रिया फिर दोबारा से आपने अपनी वो मैसेज भेजा। सो रेडियो फजा 97.1 FM प्रोग्राम हमारा भी अहतमाम की जानिब रवा दवा है। बहुत प्यारे से गीत इस वक्त हमारे सामने हैं और एक प्यारी सी गज़ल जो कि हम इस वक्त प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और ये गाने वाले हैं सुलेमान अलवी, और इनकी जितनी भी गज़लें थी कमाल गज़लें थी, खूबसूरत शायरी और खूबसूरत अंदाज आज के प्रोग्राम में धुन और दास्तां। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। बहुत प्यारी सी गजल, उसकी शायरी इतनी उम्दा है कि दिल चाहता है कि इंसान बार बार सुने।

पे और साहिल पे खड़े हो चले जाना। इस गीत के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे। एक प्यारा सा पाकिस्तानी लोकगीत है, उसे आपको सुनवाते हैं। समय सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद भी रखती हूँ, लेकिन आप सबसे यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखा करें, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का भी। और जैसे कि मिर्ज़ा भाई ने पहले कहा था कि मौसम क्योंकि बदला है और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं वो फैले हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग सीरियस होकर हॉस्पिटल्स में भी गए, सो कोशिश करें कि अगर ज़्यादा लोगों के क्राउड में जाएं तो कुछ मास्क वगैरह पहने, और घरों में जो ये हमारे देसी कहवे हैं ये ज़रूर पिया करें। इनमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, फ्रेश पुदीना डालें, सब्ज़ इलायची डालें, दार चीनी डालें, एक दो लौंग डाल लें और फिर उसमें हनी डाल के उसको पी लें। जो शानदा मिलता है उसके पैकेट्स मिलते हैं वो पी लें, और कोशिश करें अपने आप को गर्म रखने की, और बेड पर जाने से पहले कहवा गर्म ज़रूर पी लिया करें, और पानी में नमक डाल के पानी के गॉगल्स ज़रूर करें, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारे गले में कोई ख़राश लगती है तो उससे सूदिंग सा एक इफ़ेक्ट आता है। पैरास्टामोल किसी दवाई का नाम तो हम नहीं ले रहे, लेकिन ये कि अगर कहीं पर ज़्यादा वायरस या कोई चीज़ बढ़ जाए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कभी सांस की तंगी महसूस हो तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अपना ख्याल रखें और ज़रूर रखें, क्योंकि मौसम बदल रहा है। जब भी एक मौसम दूसरे मौसम का हाथ छोड़ता है तो फिर इंसान क्या, जानवर क्या, कायनात पूरी ही बीमार हो जाती है। और जाने से पहले यही कहूँगी एक बार फिर से कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिश्तों का भी और हमारा भी रखा करें, प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। और मुझसे पहले जो प्रेजेंटर थे उन्होंने जो प्रोग्राम किया उनका भी शुक्रिया। ढेर सारी दुआओं के साथ फी अमान अल्लाह।

0: 97.1 FM।
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
2: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। जी उम्मीद करते हैं जी तुसा खैर उफियत नाल हो। सो वेलकम टू रेडियो फिजा 97.1 FM।

बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस वगैरह आए सन. ऑब्वियसली आई वाज एन एफ ऑफ पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड नाउ आई एम बैक इन द स्टूडियो. तुसने अपने रेडियो रेडियो फजान स्टूडियो में पहुंच गया. तो उम्मीद करना जी साढ़े भैन भ्रा साढ़े दोस्त बाब ऑल माई टैक्सी ड्राइवर्स ओ माई टेक वेज रेस्टोरेंट्स ऑल द बिजनेस वेयर एवर यू आर तुसा सारे की वेलकम करने. एंड असा को अज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है. एज ऑलवेज आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई डू नॉट मिस. Every Tuesday is my time and Tuesday is your time. Pehle sari timing honi si 7-9 hon sari timing thodi ji change hogi hai ji sari timing hogi hai 6-8. Obviously heading into winter now and there are many other changes which take place and programming ki timing aksar change honi rehni hai koi masla nahi hona as long as listenership is listening.

तो शुरू करने जी सा अपना प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम का पहला टाइटल ऑब्वियसली द फर्स्ट ट्रैक ऑफ आवर प्रोग्राम इज ऑलवेज, तुसें बताना माड़ी कोशिश होनी है कि जिहड़ा भी प्रोग्राम असं करने आ उसी सोहणे रब दे नां तों इब्तिदा होनी है बंदे नी। ते नुसरत फतेह अली खान इज वन ऑफ माई फेवरेट, उन्हां दा इक कलाम मैं तुसां वास्ते लाना वा, आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। So in the meanwhile, you keep listening to Radio Fazaar 97.1 FM / Dab Radio. This is on our radio. Radio Fazaar, entertainment, communication, entertainment,

तुसें अपना रेडियो चैनल ऐ जी, तुसें अपना शो असें पेश करी रहे, तुसें वास्तै जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने ऑब्वियसली ट्यूजडे माई डे ट्यूजडे जितने भी अज सुबह तो लैके शाम तक जितने भी ये प्रोग्राम पेश किए तुसें वास्तै सारे तुसें वास्तै साड़ी कम्यूनिटी वास्तै एंड इट्स फॉर एवरीबडी ऑल द कम्यूनिटी नॉट जस्ट विद इन आवर कम्यूनिटी बट ऑल्सो ऑल द साउथ एशियन कम्यूनिटी. जेह्ड़ी मर्जी जबान च प्रोग्राम पेश किया जाए सुनिया करो फीडबैक दिया करो, फीडबैक बड़ी जरूरी होनी है.

तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बड़ा ट्रैक बाय नुसरत खान। सुनो तो मजे की नो इस ब्यूटीफुल ट्रैक।

बिल्कुल जी, तुम्हें दिल लगी। बिल्कुल जी, तुम्हें दिल लगी बोली जानी पड़ेगी। दिल लगी उसी दी याद ऐसी ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। बिल्कुल, काम कोई भी आसान नहीं होना, तुसा की आसान करना पैना, बनाना पैना।

जी तो गल हुई है जी आज असा टॉपिक जड़ा बड़ा सोहना जो टॉपिक असा रखे मनी मैटर्स पैसा जड़ा ना वो जरूरी है मनी मैटर्स

अक्सर इच एह चीज़ होनी है कि किसे वेले बंदे गल करदे जी आने जी अजकल दा जमाना ही अजे आई गया कि लोग तुसां की पैसे विच तोलने तुसां की पैसे विच तोलने जी ते पैसे नाल नहीं बंदे की तोलना चाहिदा तुसां नहीं सवाले नाल क्या होना तुसां सां अपनी तुसें इस सवाले ने क्या आखना तुस अपनी फीडबैक देई सकने नंबर है 01157100971 ते तुसें इस नंबर पर व्हाट्सएप करी सकने साढ़े एक हर बंदे ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना अपनी सोच होनी है अपना ख्याल होना है माड़े वास्ते माड़े नज़दीक पैसा जेड़ा ना जिंदगी ने जरूरी जिंदगी भी जरूरी है जरूरियात पूरी करने वास्ते है लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग टू मी।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारी

0: or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Commercial time.
7: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: दीवाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
1: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

रहमा किसे किसे पुकारिए किसे किसे पुकारिए जवानी आये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिले। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: सुकू सुकू। आई आई।

0: हद का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 एफएम।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
6: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.